मुंदा संतोख सरम पंथ झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर पूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशान है कट कट के पट पट की जान है जाबुद करख करा करतारा प्रजा तरतब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत दे तर सब हूँ जेते

चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतपुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संग्रो दुष्ट जेते उठ बतुत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग

हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

झूठे कसमें वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से, नफरत करूंगा मैं जब तक है जान।

और आरफा कहती है कि पता है क्या, एक्चुअली मैं तो संगीत में इतनी मगन हो जाती हूँ कि मैं सोचती ही नहीं हूँ कि आपने कौन से लफ्ज़ पे इतने गाने सुना दिए हैं, बस इंजॉय करते जाइएगा। सर मैंने कहा था कि मैं आपको रोबोटिक टैक्सीज जो हैं, सर मैं खुद चलने वाली, उसके उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, तो ये ईजाद है गए 5-10 सालों की कि ये टैक्सीज मुतारिफ कर दी गई हैं कुछ मुल्कों में

चलने वाले भी इससे सुरक्षित नहीं है। इतनी करीब से तेज रफ्तार जा रही है, फिर किसी पैदल चलने वाले राहगीर के एक इंच दूरी पर आके खड़ी हो जाती है। समी, ये बड़ी शैतानी है, ये रोबोट टैक्सी शुक्र है यहाँ नहीं है।

अच्छा ठीक है, ये प्यार की बातें आपने बहुत कर ली, खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं आपको समझ एक आवाज़ सुनाना चाहती हूँ, और वो है कुंदन लाल साइगल। जितना समय उनका योगदान है हमारी इंडस्ट्री में, क्या आवाज़ थी उनके, क्या वो जीनियस थे एक। तो कभी कभी मैं उनकी आवाज़ में एक आधा, सुबह सुबह ज़रा मुश्किल हो जाता है उनकी आवाज़ के गाने सुनाने, लेकिन एक आज ज़रूर उनको याद करना है, कुंदन लाल साइकिल को। इसके बाद हमने आपको खबरें भी सुनानी है, जिसके बाद हम चाहेंगे कि आप हमें एक, मैं हिंदी में बताऊंगी, नहीं नहीं मैं इंग्लिश में बताऊंगी आपको, कुछ एक फ्रेज दूंगी, एक्चुअली तो वो मुकम्मल सेंटेंस भी है, फिर आप उसको अपनी भाषा में बताएंगे कि हम क्या कह सकते हैं। गुस्से में कहना है वो भी ठीक है, खुशी में कहना है ठीक है, अगर नहीं तो वैसे ही करना है ट्रांसलेट, लेकिन आगे ट्रांसलेशन आ रही है जो बेमिसाल अंदाज का फीचर है।

0: और यूसुफ भट्ट बहुत शुक्रिया आपका समिन सबसे पहले जिन्होंने मुझे सही जवाब दिया है और वो है पंजाबी में लक्ष्मण सिंह वेल डन आपने दो भेजे हैं मैं थोड़ी देर के बाद पंजाबी का सुनाती हूँ लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ आप कोशिश करें बट लक्ष्मण सिंह वेरी इम्प्रेस्ड विद यू और यहाँ पर कौन है मुझे अपने हाल पर छोड़ दो ये कहा है कल्पना बिल्कुल कल्पना ये वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग गेट ऑफ माय बैक अब ये आपका पोलाइट है और मुझे चाहिए थोड़ा सा यू नो गेट ऑफ माय बैक थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाएं अमीर अली राना परेशान मत करो वेरी गुड Now you see it has anger in it. There's an element of anger. Ameer Ali Rana. Lachman Singh ka bhi main bata hi deti hoon. Inhone jo likha hai Lachman Singh ne. Pehle inhone kaha. Mere pichhon le. Ye bhi ho sakta. Mere pichhon le. Aur dusra. Mera khaira chad. Wah. Kya Punjabi hai. Kamal hai. Punjabi mein. Mera khaira chad. सना नहीं नहीं नहीं दैट्स नॉट करेक्ट मंजुला विश्वकर्मा
1: नमस्कार परवीन जी आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई ना और जो भी आपने पूछा उसका होगा मेरा पीछा छोड़ो
0: मेरा पीछा छोड़ो ओके ये कोई इतना पोलाइट नहीं है ठीक है जो हम कहना चाहते हैं वो है इसमें एलिमेंट
2: हेलो नमस्कार हनर पटेल किसुमु मने कोई पण मारी पाछर सहायता करे ए मने पसंद नथी थैंक यू हनर पटेल किसुमु
0: ये डायरेक्ट ट्रांसलिट्रेशन है ट्रांसलिट्रेशन लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वो मूड भी बरकरार रखें ना मूड कैसा है गेट ऑफ माय बैक
3: प्रवीण जी नमस्कार इसको तो हम कई तरह से बोलते हैं जैसे वो मेरे सिर पर सवार हो गया दूसरा बोलते हैं वो मेरे पीछे ही पड़ गया रितु गुप्ता
0: हाँ वो आपके पीछे पड़ा है लेकिन आपने क्या कहा है ये मैं कह रही हूँ गेट ऑफ माय बैक ये आपने कहना है इसलिए कि वो आपके पीछे पड़ा है पर ये तो जवाब ना हुआ ना कि वो मेरे पीछे पड़ा नो जवाब है कि आप कहें उसे गेट ऑफ माई बैक अच्छा ये बहुत अच्छा है चिराग पटेल मुझे अकेला छोड़ दो गुड वेरी गुड चिराग पटेल यू सी इसमें इरिटेशन है हमने इरिटेशन दिखानी है ये नहीं कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी कमर को अकेला छोड़ दें ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता

0: और दिनेश शाह, दिनेश शाह कहते हैं कि पता है क्या, इनको तो आप कह सकते हो मारी पाछड़ पड़वानू बंद करो, मारी पाछड़ पड़वानू बंद करो, मेरे पीछे पड़ना बंद करो, ओके। कहते हैं मने शांति थी जीवा दो, ओके ओके, और मारा थी दूर रहो, ये बड़ा अच्छा है, get off my back, मारा थी दूर रहो, और मने एकलो छोड़ी दो। दिनेश वेल डन, उन्होंने ऑल टाइप्स ऑफ छोड़ दो छोड़ दो, get lost, ओके। यूसुफ भट्ट ने कहा है दफाओ, पंजाबी में सामिन दफाओ ये कहते हैं। शनाज भट्ट ने कहा है मुझे परेशान मत करो, ओके, ये भी हो सकता था पर इरिटेशन इसमें कम है। जैतून, नहीं, आई डिडंट आस्क फॉर इट इन इंग्लिश, आई वांटेड इट इन योर लैंग्वेज जैतून, सो यू विल हैव टू, बिकॉज आई सेड गेट ऑफ माय बैक, मैंने इंग्लिश में कह दिया है, नाउ आई वांट इट इन योर लैंग्वेज, गुजराती कच्छी पंजाबी उर्दू, ठीक है, कोशिश कीजिएगा।
1: सलाम आदाब शहजादी साहब, मेरे मगरों ले
0: जी, मेरे मगरों ले, बिल्कुल पंजाबी में, वेल डन, मेरा पीछा छाड़। द आंसर इज स्टॉप बॉदरिंग मी, लेकिन नलिनी इन योर लैंग्वेज, यू मस्ट से इट इन योर लैंग्वेज, ठीक है। अब आए हैं हितेन, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो, हाँ, गेट ऑफ माय बैक, ठीक है, ऑलराइट। पर अभी प्यार अली भाटिया, मारी जान छोड़ो। क्या बात है, जान किसी ने नहीं कहा था, मेरी जान छोड़ो, वंडरफुल प्यार अली, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वाह सना काना, गुड वन, मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
2: इसे ऐसा भी कह सकते हैं, मेरी जान बख्श दो,
0: वंडरफुल, मेरी जान बख्शो, हटो यहां से। कमाल है, मंजुला विश्वकर्मा इन इंडिया। और सोनल मोदा,
3: गेट आउट ऑफ माय बैक ट्रांसलेट इन गुजराती थाई छे, मारी पीठ पाछड़ थी निकलो, सोनल फ्रॉम मुंबासा।
0: मने एकला छोड़ी दो, मारी जान छोड़ी दो, वो बेटर है, मेरी पीठ पीछे से भाग जाओ, ये तो ये नहीं, मुनासिब नहीं लग रहा ऐसा।
4: तो मेरा आंसर है मेरे तो दूर रहो।
0: मेरे तो दूर रहो, अच्छा, क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड यू, मैंने कहा गेट ऑफ माय बैक, वो था ना गेट ऑफ माय बैक, थोड़ी सी इरिटेशन हो, मजा आएगा।
5: तो फिर तुम इनसे ऐसे बोलो ना चाहिए, मेरा नाक में दम मत करो, पंजाबी जी कहते हैं जा खसम खा मेरा सिर ना खा। रितु गुप्ता, पंजाबी में बहुत है टठे खूच पै, मेरा मत्था ना खा चूल्हे च सड़ जा। रितु गुप्ता,
0: मेरा मत्था ना का मेरे से तो ले। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आई वॉन्ट टू रिपीट रितु गुप्ता का।
5: तो फिर तुम इन जैसे बोलो ना चाहिए, मेरा नाक में दम मत करो, पंजाबी जी कहते हैं जा खसम खा मेरा सिर ना खा। रितु गुप्ता, पंजाबी में बहुत है टठे खूच पै, मेरा मत्था ना खा चूल्हे च सड़ जा। रितु गुप्ता,
0: क्या बात है, समझ पता है क्यों मैंने वापस कहा, क्योंकि इन्होंने कहा जा खसमानु खा, गेट ऑफ माय बैक इज परफेक्ट, जा खसमानु खा। और समझ, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ जो कि पंजाबी नहीं जानते, तो उसका मतलब है इंग्लिश में कि गो एंड ईट हस्बैंड्स, एक नहीं ज्यादा हस्बैंड्स को खाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच इंडीड। और मेरी जान छोड़ने का क्या लोगे, वाह वाह मेरी जान छोड़ने का क्या लोगे, कमाल क्या एक्सप्रेशन है। शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वेल डन। और सेलिडार इन लंदन, हैविंग अ प्लेस टू गो इज होम, हैविंग समवन टू लव इज फैमिली, हैविंग बोथ इज अ ब्लेसिंग एंड हैविंग फ्रेंड्स टू टॉक टू इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स इन लाइफ। सेलिडार बहुत खूब। और रमेश हरिया, अपनी टांग अड़ाना बंद करो या फिर दूर हटो मुझसे। ओके, गेट ऑफ माई बैक, दूर हटो मुझसे, दफा दूर। ये दफा का बड़ा अच्छा था। मुझे तंग करना छोड़ो, नाजनीन फ्रॉम नाजनीन, मुझे तंग करना छोड़ो। ओके गुड। चिराग, छोड़ें यार, बस भी करें यार, बस भी करें। अच्छा, ये पोलाइटली उनको कह रहे हैं, गेट ऑफ माई बैक, बस भी करें, छोड़ें यार। आहा, व्हाट अ गुड आइडिया चिराग पटेल कराटीना से। और जितेंद्र ने भी कहना है
6: कुछ। वेलकम, सारे नमस्कार। मैं हमने थोड़े सुनिया कि तुसी जिहड़ा क्वेश्चन कह रहे हो ओदा एदा भी हो सकता वा, आपा कहने दफा हो,
0: दफा ही किया है पहले, किसी ने कहा था यूसुफ भट्ट ने, दफा हो पहली। और सलमा अहमद, गेट ऑफ माई बैक खुद भी रिफ्लेक्टेड एज मुझे बार बार टोकना बंद करो, स्टॉप कटिंग मी इन, कटिंग इन या स्टॉप इंटरप्टिंग मी। ओके, लेकिन गेट ऑफ माई बैक वॉज समथिंग डिफरेंट। ओके,
7: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, मिसेस धंजलियर। प्रवीण जी, आपके सवाल का जवाब है, मुझे परेशान मत करो, मैं काम कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
0: मैं काम कर लूंगा मिसेस धंजल। और साथ आए हैं
8: सलाम प्रवीण जी। प्रवीण जी, इसकी ट्रांसलेशन तो हम पंजाबी में अगर करें तो ऐसा कह सकते हैं, ओए कमीना मेरी नजर तो दूर हो जा, ओए मैं नहीं जानता जो करना तू कर रहा। शुक्रिया, थैंक यू प्रवीण जी।
0: समीन, आज अजय पाल ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ना पाकिस्तानी वो पंजाबी फिल्में हुआ करती थी, उसके जो कैरेक्टर्स थे ना इसी तरह बात करते थे पंजाबी में। एग्जैक्टली, थैंक यू अजय पाल। ऑलराइट, रंजन विनोद, एक बात कहूँ भोले पिया, ये एक दिन ज़रूर सुनाऊंगी आपको, क्योंकि पिछले दिनों ही मैंने ये सुनाया था आपको। सो ये एक और मैसेज आया है,
9: अपने काम नाल काम रख,
0: अपने काम नाल काम रख, जगदेव सूरी। ओके, पर ये था ना कि गेट ऑफ, हमने बैक का भी थोड़ा इस्तेमाल करना था कि गेट ऑफ माय बैक। मुझे किसी ने कहा दफा हो, कितने लिसनर्स ने कहा दफा हो। अब दफा हो को आप इंग्लिश में कह सकते हैं इन टू वर्ड्स, जैसे दफा हो तो इंग्लिश में भी दो ही अल्फाज हैं, टू वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है, छोटे छोटे लफ्ज हैं दफा हो के लिए। क्या है

0: मैंने कहा कि दो अल्फाज में टू वर्ड्स में बता दो दफाओ शनाज बट फ्रॉम तंजानिया आपने सबसे पहले जवाब दिया है आपने कहा है गेट लॉस्ट बिल्कुल करेक्ट और भी हैं पर गेट लॉस्ट ओके गुजराती में रसेला कहती हैं के ना देखो मने एकला मुक मारो पीछो छोड़ मने एकला मुक एंड मने पीछा छोड़ मने हैरान ना कर मने एकलो मुक अच्छा बहुत लंबा है रसीला जब तक वो एकला मुकने वाला ना भाग ही जाए है मारो पीछो छोड़ दे दूर जा मारो पीछो छोड़ ने दूर जा ठीक है बहुत अच्छे बिल्कुल करेक्ट हैं इनके साथ आए हैं कौन यहाँ पर ये जो हाँ जैतून है जी हाँ आपने कहा है मुके एकली मुकी दे हैरान ना कर मुके एकली मुकी दे ये कच्ची जबान है समिन मेमंस की जो है ना वो है मुके एकली मुकी दे हैरान मत हैरान ना कर ये और गुजराती बहुत करीब हैं कच्ची गुजराती और यहाँ मारी पाछड़ पड़वानी बंद करो मेरे पीछे पढ़ना बंद करो अब मिसेस चाना क्या कहती हैं
1: अरविंद जी गुड मॉर्निंग मेरा आंसर है जा मेरा खेड़ा छड़
0: जी मेरा खेड़ा छड़ बिल्कुल पंजाबी है करेक्ट है जबीन हिरानी गुड मॉर्निंग यू से मने मुकी दे मुझे छोड़ दो लाइफ चैलेंजेस आर नॉट सपोज टू पैरालाइज यू दे आर सपोज टू हेल्प यू डिस्कवर हु यू आर कहते जब मुश्किलात आपके रास्ते में आती हैं आपको पता चलता है आप कौन हैं ओके मने एकला मुकी दे ये बिल्कुल ठीक है मने एकला मुकी दे नलिनी आर्षा अच्छा आपने जो कहा है लक्ष्मण सिंह दफा हो गेट आउट या करेक्ट है ये भी करेक्ट है गेट आउट अच्छा गेट लॉस्ट खतीजा बिल्कुल सही गेट लॉस्ट इज करेक्ट
2: हेलो प्रीत जी इंग्लिश हो रहा है गो अवे
0: अच्छा गो अवे हो सकता है गेट लॉस्ट हो सकता है पर एक और आपने नहीं दिया मुझे किसी ने भी नहीं दिया और नितेश फ्रॉम फर्स्ट पार्कलैंड्स आंसर इज गेट आउट और या गेट आउट और गो नाउ ये भी हो सकता है बिल्कुल नितेश साथ आए हैं
3: कच्ची में बोलते हैं मुके छड़ी दियो
0: मुके छड़ी दियो बिल्कुल मुझे अकेला ही छोड़ दो अच्छा गेट लॉस्ट मेरी नजरों से हट जाओ सोनल मोदा बिल्कुल सही मेरी नजरों से हट जाओ वो हिंदी में होता और चिराग पटेल फ्रॉम कैराटीना गेट लॉस्ट और गेट आउट पर एक और भी कॉन्वर्सेशनल है चिराग इट्स वेरी कलोक्वियल कलोक्वियल क्या होगा नाजनीन गेट लॉस्ट बिल्कुल करेक्ट वो है लेकिन एक और मैं ढूंढ रही हूँ किसी ने नहीं दिया
4: परवीन जी दफा हो को हम बोलेंगे गेट लॉस्ट और पिछला मैं बोल रही हूँ कि हम लोग तो अक्सर ग्रैंड डॉटर जब किसी चीज के लिए पीछे पड़ जाती है तो हम उसको यही बोलते हैं मैं या उसके पापा मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे
0: ये किसी और ने भी कहा था क्या लोगे बहुत अच्छे ओके सना गेट आउट गेट लॉस्ट एंड गो टू हेल ये तो जहन्नम में जाओ वो होता ना ये तो दफा हो है वो नहीं बता रहे कहाँ जाना है दफा हो वाले सो ये आखिरी जो है गो टू हेल ओके मे बी अच्छा शोभना बहुत शुक्रिया आपका हितेन परवीन जी दफा हो कुड बी गेट लॉस्ट ओके हितेन ने सही दे दिया है जो मैं ढूंढ रही थी वो हितेन के पास था कहते हैं बज ऑफ इज द आंसर जो मैं ढूंढ रही थी हितेन वेल डन और साथ आई हैं विपिन चौहान फ्रॉम लेस्टर यूके अच्छा बंदर पीठ से उठा गेट ऑफ माय बैक और गेट द मंकी ऑफ माय बैक एक्चुअली आई डिडंट से दैट विपिन चौहान पर आपका आपकी कोशिश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने कहा है बंदर पीठ से उठा नहीं हमने एक्चुअली कहना था दफा हो गेट लॉस्ट वो उस तरह की एक्सप्रेशन थी जो जिसको मैं ढूंढ रही थी अमीर अली राणा परे हट बिल्कुल क्या बात है दफा हो परे हट किसी ने कहा ही नहीं था फॉर दफा हो बट दैट इज इन हिंदी ओके और एक और आया है क्या बात है ये हैं कौन जी हाँ ये हैं कल्पना वो कहती हैं कि गेट ऑफ माय बैक वुड बी चल हट करेक्ट आज तो रियली करेक्ट आंसर्स आपने दिए हैं और इतने ज्यादा दिए हैं

0: जी अश्विन दोषी आ गए हैं। अच्छा अश्विन, क्या ब्यूटीफुल नगमा है।
1: मुझे बहुत पसंद है ये, तलत महमूद का गाना है।
0: जी बिल्कुल,
1: फिल्म थी फुटपाथ
0: जी, देवानंद की थी
1: नहीं, दिलीप कुमार और मीना कुमारी।
0: अच्छा फुटपाथ, ओके।
1: 1954 में रिलीज हुई थी और म्यूजिक परंजी खयाम साहब का था और गीत लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी।
0: वाह खयाम।
1: और ये उनका सीरियस मूवी थी ऑन ड्रग्स होल्डिंग एंड पीपल, या सीरियस सब्जेक्ट था उस टाइम में इंडिया में होता था। मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स वुड होल्ड द ड्रग टिल द प्राइस
0: वेंट अप। बिल्कुल,
1: या बट इन द मीन टाइम पीपल सफर्ड बिकॉज दिस ड्रग्स वर एसेंशियल
0: एंड देयर वाज अ शॉर्टेज
1: एंड पीपल डाइड।
0: अच्छा फुटपाथ,
1: ऐसी कुछ स्टोरी थी पर
0: बहुत अच्छा है आइडिया। वाह क्या बात है।
1: और दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फर्स्ट मूवी थी ये, फर्स्ट जोड़ी का कामयाब मूवी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। ये वो दौर था अश्विन जब सोशल जो प्रॉब्लम्स थे, समस्याएं जो समाज की थी, उनको इस्तेमाल किया उन्होंने, बखूबी बताया पर्दे पे क्या है।
1: It was done very well for me and people appreciate it.
0: बहुत अच्छे।
1: Okay.
0: Thank you.
2: East FM, Kenya's premier Asian mix. Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: खैर करे समन बिंदु ने इंडिया से आंसर बिल्कुल करेक्ट भेजा था पहला भी कि सबको पहले उन्होंने नमस्कार किया फिर मेरा दिमाग मत चाटो गेट ऑफ माय बैक बिल्कुल सही आपने कहा बज ऑफ करेक्ट आपका होता अगर मैंने टाइम पे आपका ये मैसेज खोल लिया होता तो यहां पर हैं अमीना
2: परवीन जी ऐसे भी कह सकते हैं दूर फटे मुंह चल परे हट
1: दूर फटे मुंह ये भी किसी ने नहीं कहा दफा हो जैसे है दूर फटे मुंह बहुत अच्छे खतीजा आपने कहा है गो अवे गेट लॉस्ट मैंने बज ऑफ ढूंढना था तो वो मिल गया रितु गुप्ता गेट आउट ओके सोनल लीव मी अलोन यस यस ओके बज ऑफ सना खाना और चिराग पटेल गेट द हेल आउट ऑफ हियर या इट्स ओनली कि आई सेड टू वर्ड्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर दिनेश शाह मारा थी दूर जा मारो माथू खावानू बंद कर मारा माथू खावानू बंद कर मारो होना चाहिए मारू माथू खावानू बंद कर मेरा सर खाना बंद करो ओके ये है दिनेश शाह रमेश हरिया
3: आदाब परवीन जी अभी अरुणा कह रही है कि तेल लेवा जाओ शुक्रिया रमेश हरिया
1: हाँ ये भी सुना हुआ है तेल लेवा जाओ जाओ मेरा पीछा छोटो जगो ब्रिंग तेल लोइना पी मारो विपिन चौहान इन लेस्टर यूके विपिन आप यहां से गए हुए खैर वेलकम टू बेमिसाल अंदाज अच्छा विपिन ने कहा है लोइना पी मारो बिल्कुल सही है लोइना पी मारो शबीर अहमद Please dedicate this song of Talat Mahmood to my dear brother Yusuf Bhatt. Ji, Yusuf Bhatt aaj program sun rahe hain shuru se aakhir tak aur unko dedicate karti hoon wo gana. Sham-e-gham ki kasam. Aaj ghamgi hain hum.
4: Assalamu alaikum Praveen ji. Salim Meha from London. Don't complicate life. We won't be here forever. Once this day is over, is gone forever. See the beauty in every day of your life. Live your life. Praveenji, good morning to you and all your lovely Bemisar listeners. Have a beautiful day. Thank you.
1: Thank you, Salim Meher. Very good. Aur kehti hain ki wow, apna raaz khuda khair kare. कहती ये गाना सुन के मुझे ब्रॉट बैक ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ यू प्लेइंग इट सलमा अहमद फ्रॉम किसुमू मूवी थी प्यार मोहब्बत जी जी प्यार मोहब्बत थी बिंदु क्या कहती हैं बिंदु फ्रॉम इंडिया
5: राजस्थानी में कहते हैं किसकली
1: किसकली क्या बात है अच्छा लगता है दूसरी लैंग्वेजेस में भी पता चला है कि इनका हो सकता है आपका कहीं सामना हो जाए और कोई आपको कह रहा है बज ऑफ और आप कह रहे हैं थैंक यू ये भी तो हो सकता है ना इसलिए हर लैंग्वेज में ये जो एक्सप्रेशंस है ना ये जाननी बहुत जरूरी है

0: बेमिसाल अंदाज़ ईस्ट एफएम और सोनल मोदा ने शायद कुछ और भी कहना है और बिंदु का मैंने जी बज ऑफ का कहा था,
1: राजस्थानी में कहते हैं खिसकली,
0: हाँ ये मैंने आपको सुनाया था बिंदु का, सोनल मोदा का भी शायद
2: गेट आउट ऑफ माय बैग ने गुजराती माँ कहवाए आघोमर, सोनल फ्रॉम मुंबासा।
0: ओके थैंक यू। दिनेश भट्ट हमारे क्रिकेट के रिपोर्टर।
3: वालेकुम सलाम। श्रीलंका टूर टू वेस्ट इंडीज, पहला ओडीआई मुकाबला श्रीलंका ने 41 रन से जीत लिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का आज पहला टेस्ट मैच है।
0: अच्छा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले हैं आज। दिनेश भट्ट बहुत बहुत धन्यवाद। Another similar phrase, get off my back, is take a hike. Yes, Salma Ahmed, take a hike. Good one. Okay, Samin, अब मैं आपको एक गजल सुनाना चाहती हूँ। है तो नाहिद अख्तर की beautiful आवाज में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले मुखड़ा इसका क्या है। शबे गम, समझ यानी गम की रात, ठीक है। शबे गम मुझसे मिलकर ऐसे रोई, यानी गम की रात मुझसे मिली और इतना रोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई। तो ऐसा लगा जैसे कोई सदियों के बाद आके मिला है, इतना वो रोई। शबे गम मुझसे मिलकर ऐसे रोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई। एंजॉय कीजिए।

मिला हो जैसे सदियों बाद कोई और जबीन हिरानी कहते हैं व्हाट अ सुपर्ब गजल बाय नाहिद अख्तर बिल्कुल आई एग्री विद यू कमाल की गायकी अमीर अली राणा परवीन जी नाहिद अख्तर ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज ये जी हाँ अमीर अली राणा इनका करियर भी कितना लंबा था आजकल मैंने सुना है कि I hope she's alive पर आखिर में आकर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका में शायद अपने बच्चों के साथ जा बसी हैं तो समिन ये बात है कि देख लेते हैं कि मंजुला गोरसिया भी हैं जी मंजुला अच्छा उन्होंने देखा कि मैंने उनको डायरेक्टली ऑन एयर ले लिया लेकिन आपके लिए सवाल लेकर आई होंगी लेकिन समिन मैं सोच रही थी हमने ये भी तो करना होता है कई बार ट्रांसलेट व्हाट्सएप व्हाट्सएप ये कितनी सिचुएशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप वैसे ही कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है व्हाट्सएप या कोई कोई परेशान है उसको पूछना है कि हुआ क्या है तो तरह तरह के व्हाट्सएप होंगे छोटे से छोटा करें इस्तेमाल दो तीन अल्फाज में हो जाना चाहिए

और व्हाट्सएप व्हाट्सएप का जैनुल मोहम्मद आपने कहा है सू चाले छे रसीला ने कहा है सू चाले छे और सू खबर छे सना कोई परेशानी क्या मसला है ओके व्हाट्सएप क्या मसला है? अगर आप ने किसी को देखा है जो गमगीन है बिल्कुल और समझ एक क्वेश्चन आपके लिए आया है लिसनर ने कहा है कि देखो मैंने कभी ये गाना आपके प्रोग्राम में नहीं सुना तो मैंने कहा ओके खुद सुना दो

0: हाँ अश्विन, ये क्या दिल एक मंदिर है?
1: तो परुण जी हिट हुई थी परुण जी,
0: रियली क्या बात है।
1: राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार,
0: ट्रायंगल
1: ट्रायंगल जैसा था। हाँ यस, नॉट एग्जैक्टली, राजेंद्र कुमार डॉक्टर थे और मीना कुमारी उनकी प्रेमिका थी। फिर शादी हुई राजकुमार से, राजकुमार को कैंसर हुआ तो राजेंद्र कुमार कैंसर के स्पेशलिस्ट थे।
0: ओह गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस, इत्तफाक बहुत होता था,
1: बहुत
0: है ना, कोइंसिडेंस। हाँ
1: कोइंसिडेंस, लेकिन फिल्म हिट हुई पर जी।
0: अच्छा,
1: ये तीनों की एक्टिंग
0: राइट,
1: और शंकर जी किशन का म्यूजिक।
0: उफ, आई नाउ रिमेम्बर, आई सॉ द मूवी। ये वही बोट का सीन है ना, मीना कुमारी का आती है,
1: आई थिंक सो,
0: बोट लग रहा है जी। अच्छा,
1: यस यस, तो ये वही फिल्म थी। दिस इज साउथ इंडियन डायरेक्टर पर जी।
0: अच्छा, पर देखिए कास्टिंग उसने कितनी अच्छी की, तीनों उम्दा अदाकार थे। बहुत खूब,
1: वो तो उनका कारण था, एक कारण।
0: राइट राइट, और फिर म्यूजिक,
1: दूसरा म्यूजिक शंकर जी किशन ने कमाल कर दिया।
0: वाह क्या बात है,
1: ये तो
0: अच्छा खूब चली,
1: खूब अप्रिशिएट।
0: बहुत मेहरबानी अश्विन, थैंक यू। समझ, बात ये हुई है कि क्वेश्चन जिसने पूछा था उनको उनका आंसर दे दिया है अश्विन दोषी ने, फिर ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, व्हाट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी एंड अर्जेंट सिचुएशंस, एग्जांपल यू आर समवन इन अ बिजी एंड डेंजरस सिचुएशन वेयर यू हैव अ फीलिंग द पर्सन नीड्स हेल्प। सो आपने कहा है व्हाट्सअप, है ना, वो तो ठीक है, पर उसका अपनी भाषा में।
2: पंछी से चुरा कर
0: हो गया है ये, अभी अभी हमने आपको सुनाया, लेकिन यहाँ पर आए हैं शबीरा।
3: शहजादी साहिबा आदाब, हमने तो ये बहुत दफा सुना है बेमिसाल पे।
0: जी हाँ शबीर अहमद, मैं उन्हें कह ही रही थी कि ये तो मैंने सुनाया है, लेकिन कहने लगी हमने नहीं सुना। शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आपने कहा मीना कुमारी, बिल्कुल मीना कुमारी पे फिल्माया गया।
4: प्रवीण जी, ये मूवी थी दिल एक मंदिर, इसमें मीना कुमारी, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार जब वो बीमार हो जाते हैं तो मीना कुमारी उस राजकुमार के लिए गाना गाती है, रितु गुप्ता
0: जी। रितु, और मुझे याद है एक कॉन्वर्सेशन जिसमें वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि डॉक्टर, नहीं डॉक्टर कहता है शायद राजेंद्र कुमार, कि तुम्हें लगता है कि क्योंकि हमारा पहले कोई ताल्लुक था तो मैं उनकी जान लेने की कोशिश करूंगा, कभी नहीं हो सकता, मैं अपने फराइज निभाऊंगा एज अ डॉक्टर। मुझे लगता है इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन। ये गाना हाँ मीना कुमारी पर फिल्माया गया है, रमेश हरिया ने कहा है फिल्म का भी नाम, और कुछ दिन पहले आपने सुनाया था, या मैंने उनको यकीन दिलाया कि ये मैंने सुनाया है। ओके शोभना, आपने कहा है दिल एक मंदिर मीना कुमारी। रूपल, द क्वेश्चन ऑफ द सॉन्ग दिल एक मंदिर मीना कुमारी, बिल्कुल करेक्ट। जबीन हिरानी, वो भी आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सोनल मोदा, हम तेरे प्यार में, करेक्ट आंसर। और फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी, 63 में। और अमीर अली राना, बिल्कुल सही जवाब, दुरुस्त। सना सना, ओके अच्छा, कहती हैं कि व्हाट्सअप की जगह आप कह सकते हैं दुखी लग रहे हो, यू लुक वरीड, उसका तो फिर वो होगा ना, यू लुक वरीड। ओके बेस्ट सॉन्ग रसिला, आपने कहा है दिल एक मंदिर का, ये बेहतरीन गाना था, बिल्कुल सही गाना था। और अमीर अली राना, की गल है व्हाट्सअप पंजाबी में कोई नहीं पूछ रहा, तो अमीर अली राणा ने कहा की गल है व्हाट्सअप के लिए। और परवीन जी, दिल का सलाम व संग इन अ हॉस्पिटल, दिल एक मंदिर का जो गाना है संग इन अ हॉस्पिटल रूम, द बोर्ड इज अजीब दास्तां है ये, Yeah, that's the song I was trying to recall. Or Rita, thank you. Rita ne zarur, maine khud ye film dekhi hui hai. So I was right. Acha, ab aisa hai ke dono kaam hamare ho gaye, WhatsApp bhi ho gaya hai. Ye inhone WhatsApp bana diya, lekin humne to shuru kiya tha na WhatsApp ke saath.
5: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
6: Priority Banking from Standard Chartered not only manages your wealth and legacy, Priority Banking from Standard Chartered connects you to investment opportunities across the world. Real global expertise and a wide range of investment solutions right here in Kenya. Now is your time for wealth. Join Priority Banking today and enjoy real returns and real peace of mind. Visit your nearest branch or speak to your relationship manager.
5: Kenya's premier Asian mix, East FM.

0: और जेनुल कहती हैं कि वैसे तो व्हाट्सएप के लिए यू कैन सी दिस सु चाले छे सु वात छे सु समाचार केम छो बधु बराबर छे क्या बात है बहुत अच्छे एग्जांपल थैंक यू और सलमा अहमद कहती हैं पता है कि ये जो व्हाट्सएप बना दिया ना हमने हमें कहना चाहिए क्या हाल ऐप बिल्कुल सही कहा है आपने और सू आपने कहा अजीब दास्तां है ये इज़ फ्रॉम द मूवी दिल अपना प्रीत पराई मैं हमेशा इस गाने को इस फिल्म के साथ जोड़ देती हूँ सू थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी ये दिल अपना और प्रीत पराई का गाना है वाह क्या बात है लिसनर्स की नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा है बहुत थैंक यू
1: शहजादी साहब शबीर अगेन क्या बात है आपके लिसनर्स इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं अभी रीता जी ने जो कहा है वो दिल एक मंदिर का गाना और वो बोट का सीन वो एक दूसरी फिल्म थी क्या बात है यू नो यू गॉट सच फैंटास्टिक लोग सुनने वाले योर ऑडियंस इज अ फैंटास्टिक लॉट ऑफ नॉलेज
0: और शब्बीर अहमद मैंने आपका मैसेज सुना भी नहीं मैंने जो कहा आपने बिल्कुल वही कहा है ठीक कहा और यहाँ पर चलते हैं किसके हाँ क्योंकि शब्बीर अहमद बड़े अच्छे कीन लिसनर हैं एक गाना उनको कर देते हैं क्योंकि इनकी मादरी जबान पंजाबी है
2: इंतजार दियां कड़ियां बहुत लंबियां होंदियां ने खास तौर ते घर विच बैठी सज व्याई मुटियार लई ए कड़ियां किन्नियां औखियां होंदियां होंगियां

0: और सलमा अहमद, आपने रूना लैला का जिक्र किया और काफ़ी इंफॉर्मेशन भी भेजी है उनके बारे में। रूना लैला जी, ठीक है, आपने जो गाने कहे हैं मैं उनका इंतज़ाम कर दूंगी। फ़िलहाल तो ज़रा मुश्किल है, अभी मुझे साइन आउट भी करना है, बट थैंक्स फॉर द मैसेज। और यहाँ पर हैं अमीर अली रानपुर जी, एज यूजुअल ग्रेट शो, टुमारो इज़ फ्राइडे, नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ इट Cause after Friday you are not here for the day, for 2 days. अच्छा, पर फिर भी जुमे का है ना दिन, बड़ा मुबारक दिन होता है अमीर अली राना। दिनेश शाह
1: प्रवीण जी, अभी आपने व्हाट्सएप का बात किया तो व्हाट्सएप ऐसे होता है बेबी नेपी जैसा होता है, ठीक होता है तो देखना पड़ता है कुछ हुआ कि कुछ नहीं हुआ। दिनेश शाह
0: जी, बिल्कुल कुछ हुआ है कि नहीं, कमाल है। जितेंद्र एंड धीरू भाई लखानी हैं शायद। धीरू भाई, आपके काफ़ी मैसेजेस आए हैं लेकिन क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थे मैसेजेस, मैं आपका बर वक्त नहीं पढ़ पाई, पर थैंक्स ऑल द सेम।

0: Alpha on air.
1: अधिकांश की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

0: And what a beautiful, beautiful track in the vocals of Mahalakshmi Iyer, taken off from the movie Sir. Lucky Ali ka debut hua is film mein. Besides being a successful musician, this marked Lucky Ali's first ever acting role. Imagine he took it up at the age of 44. कहते ना कोई जिंदगी का फिक्स्ड ऐसी एज नहीं होती जहाँ पे बस यार अब तो कैसे करेंगे 40 में हो गए 50 में हो गए. नो इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू कैन स्टार्ट योर लाइफ ऑल ओवर अगेन एट एनी पॉइंट एट एनी एज ऑफ योर लाइफ एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक अबाउट ऑन
1: दिल से कह दो
2: ऑन ईस्ट एफएम केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स.
0: हमारी रहमत हफीज की आवाज है ये, दिल से कह दो. वाह वाह रहमत, मजा आ गया. एनीवेज, तो दिल से कह दो पे आज मेरे पास एक सवाल है आपके लिए और समथिंग यू कैन एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन एंड आई कैन रिफ्लेक्ट ऑन एज वेल. यू नो इन लाइफ एज ह्यूमन बीइंग डिफरेंट एज आई स्टेज आई वाज टॉकिंग अबाउट माय 20s एंड 30s एंड 40s और 50s 60s व्हाटएवर इट इज, वी ऑलवेज हैव दैट वन ड्रीम, यू नो समथिंग दैट यू कैरी फॉरवर्ड फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स. इट्स नॉट हैपेंड प्रोबेबली, इट्स नॉट यू नो लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है वो सपना, बट वो आप लेट गो नहीं करते, आप जाने नहीं देते, आप कहते नहीं ये ड्रीम तो मैं पूरा करके रहूंगा या पूरा करके रहूंगी. और यू समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ योर हार्ट यू हैव दैट होप दैट दिस ड्रीम विल समडे कम ट्रू. ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट्स दैट वन ड्रीम यू हैवंट गिवन अप ऑन. ओके, व्हाट्स दैट वन ड्रीम यू हैवंट गिवन अप ऑन. कॉल मी 0711046106. आई वुड लव टू टॉक टू यू और यू कैन मैसेज मी 0701 106 106.
2: East FM, more of Kenya's premier Asian mix. East FM.

तो इफ यू आर इन वट एवर एज ग्रुप दैट यू आर इन राइट नाउ जस्ट मेक इट हैपन रिमूव इवन 10 मिनट्स स्टार्ट विद 15 मिनट्स 20 मिनट्स एंड स्लोली स्लोली यू विल सी ग्रेजुअली डूइंग वॉट यू बीन वॉन्टिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स ऑल अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू रोजीना थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम बैक मैसेज येस आई डिड इन्जॉय माई ट्रिप और बहुत सारा ग्रीजी ऑयली खाना ऑल्सो But I walked a lot as well in Himachal, so I guess I kind of balanced out. I appreciate your company so much. Keep that going. I've got Abdul, my friend who's tuned in as well, saying, sip your chai, turn up the volume and travel through time with Retro to Right Now. Love your new show. Thank you, Abdul. I appreciate you so much. My friend Narisha also is tuned in. And these are my friends, jinko aise bolungi, tumhari to jao radio suno, abhi kabhi on karo, sunna padega. So I'm loving your company as well. Let's enjoy some more good music. Tell me, what is that one dream you've never given up on? 90s Car Rewind. Nasha ye pya

ये जो कॉम्बिनेशन है ना आमिर खान और उदित नारायण का, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. फ्रॉम द डे वन व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर इन कयामत से कयामत तक आमिर खान और उदित नारायण की जोड़ी ऐसा ही रही है एंड इट वेंट ऑन फॉर मेनी मेनी इयर्स. व्हाट अ ट्यून इट्स प्लेइंग फॉर यू ऑन ईस्ट एफएम केनिया's प्रीमियर एशियन मिक्स. सो दैट वन ड्रीम यू डोंट गिव अप ऑन. महेश इज सेइंग लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजी. जयश्री सेइंग यू वांट टू ट्रैवल टू इजिप्ट सो यू हैव नॉट गिवन अप ऑन दैट. अमीर अली you're saying that you will never give up on finding a perfect partner and yes you will get very very soon, trust me. Kamara is saying your dream to sing and sing so well that one day you get into Indian Idol auditions and why not, you can make it happen as well. You know what, anything that we want we can make it happen. Rosina is saying you wanted to be a businesswoman but you ended up becoming a housewoman. Trust me, ghar ke jo kaam hote hai na wo business wale bhi nahi sambhal sakte. उसी में पूरी दिन चला जाता है, मैनेजिंग द किचन, मैनेजिंग द शॉपिंग, मैनेजिंग द किड्स, मैनेजिंग यू नो योर पार्टनर एंड देन ट्रस्ट मी दैट इज आल्सो वेरी वेरी हेक्टिक. तो अगर कोई कहता है कि अरे तुम तो सारा दिन घर पे ही हो, क्या करती हो, उसको ना एक कान के नीचे से रख के देना और बोलना जाओ तुम एक दिन घर संभालो तब तुमको पता चलेगा. मैं भी इसी फालतू आपको ओपिनियंस दे रही हूँ. सही में मत करना. But I truly respect ladies who take care of the house 24/7. You know what? Hats off to you.

0: मुझे ये गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं आदित्य की आवाज में. इट्स प्लेइंग फॉर यू ऑन इंस्टाग्राम केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स. इट्स एग्जैक्टली 2 PM. इट्स टाइम फॉर अस टू गेट इनटू द नेक्स्ट आवर. ट्रस्ट मी द म्यूजिक इज फैंटास्टिक. बहुत ही मस्त मस्त गाने लाइंड अप है आपके लिए. सो स्टे विद मी, कीप दैट कंपनी गोइंग. दिस इज रेट्रो टू राइट नाउ विद निलोफर ऑन इंस्टाग्राम.
1: EastFM with news from Kenya, Asia and around the world. This is EastFM News presented by Parveen Adam.
2: EastFM Jumerat ki khabrein din ke 2 baje pehle khabron ki surkhiyan. Kwale mein clinical afsaran ki hartal jari. Dharno mein ghail hue Kenyans ko muawza dene ki mang. कुवैत हवाई अड्डे पर ईरान का हमला और यूनाइटेड किंगडम में पुलिस के खिलाफ गुस्से की लहर. खबरें तफसील से. क्वाले काउंटी के क्लिनिकल अफसरान चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं हड़ताल के. इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो काम बंद रहेगा. यूनियन अफसरान ने अदालत से रुजू कर रखा है. लॉ सोसाइटी ऑफ केनिया की साबिक प्रेसिडेंट फेथ ओडियांबो ने सीएस अडन दुआले की मुजम्मत की है कि अमरीकी ईबोला के मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर खोलने पर जनता से मशवरा नहीं लिया गया. फैसला संविधान के खिलाफ था. वहां केनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार की निंदा की है कि धरनों में जख्मी हुए शहरियों को मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन नहीं दी जा रही. देरी तो हो ही रही है मगर हुकूमत को सबूत देना चाहिए कि वो जो भी इकदाम उठाएं अवाम के सामने हो. आलमी खबरें. कुवैत के हवाई अड्डे पर ईरानी फौज का ड्रोन हमला हुआ है. एक मौत की खबर है. 60 शहरी जख्मी हुए. रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बयान में कहा है कि अमेरिका ने ईरानी तेल बर्दार जहाज को निशाना बनाया था. ये उसी का बदला है. मरने वाला भारत का नागरिक बताया जाता है. यूनाइटेड किंगडम की रिफॉर्म पार्टी के लीडर ने कहा है कि अवाम को गुस्से का इजहार करना चाहिए हेनरी नोवैक की मौत पर, जो पुलिस के रवैये पे सवाल उठाती है. नाइजल फराज पे वजीर आजम ने हालात का फायदा उठाने का आरोप लगाया. मरने वाले पे 23 साल सिख लड़के ने छुरे से वार करके उसकी जान ली. मरते मरते पुलिस अफसरान से कहता रहा कि वो सांस नहीं ले सकता, लेकिन उसे हथकड़ियां पहना दी गई. रिफॉर्म पार्टी के सरबरा के मुताबिक पुलिस रंग देखकर फर्ज निभाती है. कांग्रेस पार्टी ने फसाद को रोककर डीके शिवा कुमारा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी. 3 बरसों से शिवा कुमारा वजीर आला की कुर्सी के लिए कोशिश कर रहे थे. आपने सिद्धरमैया की जगह ली है जिनको अवाम बहुत चाहती है. हर दिल अजीज हैं कर्नाटक के. पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां आपने पीटीआई के बानी इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त की है. 2026-27 का बजट अगर मंजूर करवाना है तो खान साहब की विजन के मुताबिक काम होगा. इसी विजन को पख्तूनख्वा की आवाम ने वोट दिया था. कैलिफोर्निया के एक बैंक में जिस शख्स ने ग्राहकों को यरगमाल बना लिया को मार दिया गया है. पुलिस इस गलत फहमी में इंतजार करती रही कि मशकूक के पास बम है. 15 घंटे लगे हॉस्टेजेस को बचाते बचाते खुफिया पुलिस ने खात्मा कर दिया आदमी का. ये थी आज की खबरें. मैं हूं परवीन आजम.
1: The vibe is still strong. The energy is still high. From retro magic to today's biggest hits. This is Retro to Right Now with Niloufer.
0: You know, that's exactly the whole point of Retro to Right Now is when me and Rehmat were having a meeting and we were like, you know, just going through programming and saying that what is that new we can do, you know, bring that change. And change is constant, change is good, and change is necessary. And when he said, okay, fine, you know, let's do this afternoon thing. And we said, okay, you know, we have some wonderful music on the breakfast show. Then comes in Parveen ji, you know, after that on Bemisaal Andaaz with her classics. And then, of course, Nimrat is now on the drive show. Vishal is on City Lights in the night. So kya dopahar mein hum hatke kar sakte hain? Maine kaha chalo theek hai. Retro to Right Now ek tumko naam finalize karne mein ek hafta lag gaya because we were like looking for something very different. And we said no, we're gonna bring in everything together. You know, something from the late 90s, something from the early 2000s, of course the pop songs as well, latest tracks as well, remixes, and give like a whole mix bag of entertainment, okay, for you between 1 and 4 PM. And या उसके साथ जो मेरी बकबक है वो तो चलती रहती है. सो आई एम गोना स्टार्ट ऑफ दिस आवर with a very special song. This song is one of my all-time favorite. ऐसे तो मेरे बहुत सारे गाने हैं, but इस गाने की जो मेरे लिए जो like you know that affection I have for this song is another level. So recently when I was on my road trip, I must have played this song 50 times till everybody else in the car got like तू गाड़ी से निकल, नीचे उतर. शायद मुझे पहाड़ पे ही छोड़ देते वो. This many times I've heard this song and I absolutely love it and I know you love it too. So here you go.

0: And that's the wonderful combination of Adnan Sami and Sunidhi Chauhan. It's playing for you on East FM. Kenya's Premier Asian Mix. It's now some time for Bakwas. Phir aap bologe, wo to aap pura time karti ho. But no, here you have to spot the Bakwas.
1: Spot the Bakwas.
2: On East FM, Kenya's Premier Asian Mix.
0: You know what makes me happy? Is Rehmat's voice. Saying spot the Bakwas. क्योंकि हम बकवास ही करते होते हैं आधा टाइम बट यर आई मीन समथिंग फन फॉर यू ओके सो थ्री स्टेटमेंट्स एज ऑलवेज ऑन स्पॉट द बकवास जहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से ट्रू क्या है और बकवास क्या है द फर्स्ट स्टेटमेंट अमिताभ बच्चन वॉज रिफ्यूज्ड और नॉट सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो ओके बिफोर ही बिकेम अ सुपरस्टार द सेकेंड वन Priyanka Chopra was Miss World. She won Miss World in the year 2000. Okay. And the third one, Akshay Kumar was a DJ before he became a Bollywood star. Which one is true? Which one is bakwas? Let me know.

0: मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं केके और रिसेंटली इनकी डेथ एनिवर्सरी थी. इट वाज सो आयरोनिक बिकॉज व्हेन ही पास्ड अवे इन यू नो बैक इन 2022 I was traveling that time as well. And when his anniversary this time, I was also not around. And then when I saw the post and I remembered yesterday, yes, that's the day. I kind of like, you know, feeling the whole sadness across the day because I don't know, for a couple of reasons. Ek to wo mere favorite singer hai. बहुत पसंद है मुझे केके और उनकी आवाज़. सेकंडली ही पास्ड मी टू अर्ली, ही वाज रियली रियली यंग यू नो एंड वी डोंट नो व्हाट हैपेंड. ही वाज जस्ट परफॉर्मिंग एंड ही काइंड ऑफ लाइक यू नो कोलैप्स्ड. वी आई थिंक इट वाज अ हार्ट रिलेटेड इश्यू. सो या इट वाज जस्ट सो सैड. बट बस उनके काम के थ्रू, उनके गानों के थ्रू हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे. राइट ओके फॉर नाउ थ्री स्टेटमेंट्स ऑन स्पॉट द बकवास. आई एम गेटिंग इन क्वाइट अ फ्यू करेक्ट आंसर्स ऑलरेडी. द फर्स्ट स्टेटमेंट, अमिताभ बच्चन वॉज रिजेक्टेड एट All India Radio before he became a superstar. Second one, Priyanka Chopra won Miss World in the year 2000. And the third one, Akshay Kumar was a DJ before he became a Bollywood star. So which statement is true? Which one is bakwas?
1: East FM. Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.

0: यार और यारी नहीं होती तो हम कैसे सर्वाइव करते, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको लेके तो जी नहीं सकते. यार और यारी बहुत ज़रूरी है टू लिव, यू नो, इफ़ यू इवन हैव वन जेन्युइन फ्रेंड इन योर लाइफ हु ट्रूली ट्रूली केयर्स फॉर यू एंड जेन्युइनली जस्ट वांट्स द बेस्ट फॉर यू, देन यू आर ट्रूली ब्लेस्ड. टेल मी, यू डोंट नीड मेनी, यू जस्ट नीड दिस फ्यू, यू नो, दिस लिटिल दैट कैन बी एक्चुअली काउंटेड ऑन योर फिंगर्स एंड से यस दीज आर माई यार्स एंड आई लव देयर यारी. इट्स प्लेइंग फॉर यू ऑन इंस्टाग्राम केनियास प्रीमियर एशियन मिक्स एंड yes, what is that little twist on Retro to right now?
1: Don't just listen, choose it. Request your song now on Retro to right now.
0: Absolutely, I'm going to play a song. If anything that can make your day more wonderful, do let me know. Of course, it has to go with the vibe of the show. Late 90s and early 2000s, if anything latest you want to listen, I can play for you. For now, I have a request from Kamara that's coming up in the vocals of Nusrat Sahab. What a wonderful, wonderful Qawwali this is that's coming up next on East FM, Kenya's Premier Asian Mix.

you learned keeps showing up for work every day. Education, power of education. हर स्कूल के एक मोटो होती है एंड हमारे स्कूल की मोटो तो थी ही एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग जो हमारे स्कूल की मोटो थी एंड आई शेयर दैट विद यू. एंड जब हम पढ़ रहे थे यू नो एवरी स्कूल देव गॉट अ लोगो देव गॉट अ मोटो. सो हमारे स्कूल की मोटो थी नॉलेज इज पावर एंड आई थिंक राइटली सो कि नॉलेज इज डेफिनेटली पावर. पढ़ाई के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. अगर आपके पास अच्छे डिग्रीज हैं अगर आपके यू नो आजकल फॉर एग्जांपल आई नो अ फ्यू पीपल जिनके साथ इंटरेक्शन होती है बच्चे हैं समटाइम्स दे कम अक्रॉस एंड आस्क फॉर एडवाइस. सो जब हम बोलते हैं दैट यू नो व्हाट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एडुकेशन दे लाइक नहीं यार आजकल AI है आजकल ये है वो है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग. आज भी हम सीखते हैं. एंड विद दैट इज टाइम फॉर द ट्रांसलेट चैलेंज जहां पे आपको मेरे को बतानी है एक मूवी. एंड टुडेज मूवी इज ऑब्वियसली इट रिलीज इन द ईयर 1999 एंड टू वर्ड्स इट्स अ टू वर्ड मूवी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश इट साउंड्स लाइक दिस फ्रैजाइल बॉन्ड्स. फ्रैजाइल बॉन्ड्स 1999 में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड इट स्टार्स अजय देवगन सैफ अली खान एंड मनीषा कोइराला. विच इज दिस मूवी दैट आई एम लुकिंग फॉर टुडे फ्रैजाइल बॉन्ड्स.

0: Rang De Basanti in the vocals of Daleer Mendy playing Phoenix FM, Kenya's premier Asian mix. This is The City Lights with Vishal. And hum baat kar rahe the about the advice that our parents have given us. And aksar, obviously, even right now, they do advise us and they guide us how to, how to build your life and how to be a good human being and etc. So, बहुत सारे जवाब आ गए हैं, सही जवाब आए हैं फॉर द ट्रांसलेट चैलेंज. एंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वंस अगेन, नन अदर देन मंजू, यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. सो आई सोनल एंड जयश्री, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स एंड फॉर योर कंपनी. विच इज़ दिस मूवी दैट आई एम लुकिंग फॉर टूडे? सो दो वर्ड है हिंदी में एंड इन इंग्लिश इट साउंड्स लाइक दिस, फ्रेजाइल बॉन्ड्स. दिस मूवी रिलीज्ड इन द ईयर 1999 एंड It stars Ajay Devgan, Saif Ali Khan and Manisha Koirala in the lead roles. Kaun si movie hai ye? You can send me your answers on 0701-106-106.
1: All the great songs that make your day.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।